0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोस्टालिक बात सम्झोट आम हिन्द लक्टेर हटबरा पानी बस्दा बेर अस्ति चाम कहाँ रहेक जाए त सोचो त लट्ठी ठिपकन घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हा त धन्न ब्यालम्ब टिकटिकम से सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिलह सावधानी अपनाए लड्या फोलम पानी बरल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यान मिलक और से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज

0: प्यार का ड्यूएट गाते गाते जब हीरो हीरोइन ऐसे लॉन्ग शॉट में चलने लगे तो समझ लीजिए लव स्टोरी खत्म, दी एंड, और जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू। सगाई।
1: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।